जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करोनी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1498 रॉयल ऑटो सेंटर टेक स्पिरिट हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घर लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही टेक स्पिरिट 905-621-4100 तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਹੋਮ ਸਿਨੇਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਟੈਕ ਸਪਿਰਿਟ 905-621-4100 905-621-4100 ਤੇ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ

प्यारी शाम है ते देखो यार ऑलरेडी वीकेंड आ गया, ऑलरेडी एंड ऑफ सितंबर दे दिन चल रहे हैं। सो अजकल दिन भी थोड़े जे गर्म सर्द जे चल रहे हैं ते सारे नु हल्के फुल्के मिठे मिठे जे कोल्ड भी हो रहे हैं, ठंडा भी लग रही है, बच्चे स्कूले जा रहे हैं, स्कूल तो बाद भी फिर तेनों पता ही है भी बच्चे कितना ना कितने थोड़ी बहुत ही एक ओ वायरस या जर्म्स घर भी लै आते। सो चलो कोई गल नहीं, जिस अपने इम्यून सिस्टम नो स्ट्रोंग रखो ते माइंड सैट थोड़ा स्ट्रोंग रवे, आई थिंक यही मेन गल है। हूँ तो जिंदगी च यार बड़िया चीजा होंगे ने, एड्डी कि गल है। सो लाने रौनक कर दें गल बात, नंबर अपना थोड़ा याद ही है ते सुनाओ फिर किवें हो, तेरे नाल हस की लिया मुंडिया भी तू तो मगर ही पै गया मेरे हुण, जे बीबा तू हसी है।

0: Ottawa.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: नमस्कार दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना मता मता स्वागत है। ते मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा लेके आई हूँ डोगरी रेडियो। ते आज मैं तुसी लगी हूँ सुनान डुगर प्रदेश दे डांस। जिया के हर प्रदेश का कोई ना कोई फोक डांस होंदे, उहां के इत्थे भी कुछ फोक डांस होंदे ने। जेड़ा सारे फोक डांस कोला जेड़ा सब तो मशहूर डांस है फोक डांस, वो है कुड डांस। ते बाकी और जेड़े फॉर्मन डांस दे उन फुमनी, चौकी, भांगड़ा, गिद्दा, किकली, ढोल डांस ते कन्ने के कन्ने जागरण। ते ये है कुछ जेड़े फोक डांस डुग्गर प्रदेश च होंदे। तो सुनो इस एपिसोड का एक गीत।

बैक दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना मता मता स्वागत है। मैं यहाँ डोगरन सोल नहीं हाँ शर्मा, ते अस गल करा दे डुग्गर प्रदेश दे नृत्य दे जो इत्थे दे फोक डांसेस ने, जिंदे च मैं जेड़ा पर्सनली पसंद है ते जो कि बड़ा गे अट्रैक्टिव ते बड़ा गे मशहूर डांस है, वो है कुड डांस। कुड डांस जेड़ा है वो स्पेशली किया जाता है देवते की स्तुति दे टाइम या फिर खेती दे टाइम, हार्वेस्टिंग दे टाइम ते कुछ मेले भी ये ने जिथे जरूर एक कुड डांस परफॉर्म होंदा है। कई ऐसे त्यौहार ने, बैसाखी का त्यौहार है, लोहड़ी का त्यौहार है, उस टाइम पर भी ये परफॉर्म किया जाता है कुड डांस। लोग अपने अंदर की जिहड़ी खुशी है वह व्यक्त करते हैं इस डांस के जरिए, देवते की स्तुति करते हैं इस डांस के जरिए। ते कन्ने के कन्ने एक अलग तरह की ड्रेस होंदी है जो इस डांस करने को पहले लोग वेयर करते हैं। ये डांस बेसिकली मेल डोमिनेटिंग डांस है। वैसे तो अजकल कुछ कॉलेज स्कूल कोरियोग्राफर्स की करते हैं, ये विच कुड़ियाँ भी करुट दे नैट, पर एक टिपिकल जेड़ा डांस है फोक वो मेल डोमिनेटिंग डांस है, जिदे च जिन्ने भी भाई ने वो सैमी सर्कल ते फुल सर्कल च घूमते हैं, गोल गोल कुछ स्टैप करते हुए, बड़े हल्के हल्के मिठे मिठे स्टैप करते हैं ये। तो ये स्टैप करते करते जेड़ा ये डांस का रिदम होंदा है उहदे कन्ने कन्ने इंदी जिहड़ी लय है वह बढ़ती ते घटती है। ये डांस किया जाता है एक स्पेशल तरह के जो डोगरी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ने उनके कन्ने, तो कन्ने के कन्ने बांसुरी की ड्रम की आवाज़, ढोल की आवाज़ भी बिच शामिल की जाती है। बड़ा ही अलग तरह का कुड डांस का म्यूजिक होंगे जो कन्ने ही सुनने की बड़ा अच्छा लगता है, तो ये पर बड़ी मिठी मिठी डांस की लय बनती है। तो सुनो अगला गीत।

सुनादे डुग्गर प्रदेश दे कुट डांस दे बारे च मेरे द्वारा में या डोगरन सोल नेहा शर्मा ते ए जियां कि मैं तुसीं दस्या नाग देवता दी स्तुति च भी एक किता जांदा है ते जम्मू प्रदेश दे जेडे कि पहाड़ी इलाके नूं उत्थे ज्यादा किता जांदा है भद्रवाह होया मानतलाई होया पर अजकल कुछ लोग ब्याह शादियां च भी स्पेशल अट्रैक्शन वास्ते कुट डांस ट्रुप इनवाइट करदे ने ते अपने कल्चर ही प्रमोट करदे ने कुसै ना कुसै बहाने करने तुस भी YouTube लिंक पर चेक करी सकते हो कुड डांस ते उत्ते तुस देखी सकते हो कि कितना अच्छा एक वाइट कलर दी ड्रेस होंदी है जेड़े सारे मेल पांदे न चूड़ीदार जेड़ी डोगरी साड़ी ड्रेस है चूड़ीदार पजामी ते कन्ने एक उपर एक कमीज पांदे ने गोल पूरे इंदी जेड़ी अटायर होंदी है वो चिट्टे रंग दी होंदी है ते कन्ने के कन्ने पिंक या लाल रंग दी ओदे उपर कुछ चुन्नी टाइप कुछ बनदे न ते बड़ा ही अच्छा लगता है सारे इको ड्रेस सैमी सर्कल ते सर्कल च घूमदे ते म्यूजिक दी जड़ी मिठी मिठी लय है बड़ा गे अच्छा समा बनांदी है हुन मेरा भी टाइम होई दा जाने दा ते तुस मी भी इजाजत दियो मैं फिर परती आगी टिल देन बाय बाय नमस्कार दोस्तों।

0: इस साल तो इंश्योरेंस बहुत महंगी होगी। घर ते ऑटो दी इंश्योरेंस दी किश्तां ने सारा बजट हिलाता।
1: ओ जी, अमनदीप कौर इंश्योरेंस एडवाइजर दे हुंदे आ, कोई फिकर नहीं। ए देन के बेस्ट रेट्स इन द मार्केट विद फुल कवरेज।
0: होम, ऑटो, कमर्शियल, ट्रकिंग ते बिजनेस इंश्योरेंस लाइक कॉल करो इंश्योरेंस एडवाइजर अमनदीप कौर होरा नु 416-618-2761 416-618-2761।

दोस्तों खास खूबसूरत सवेरा खूबसूरत लोग खूबसूरत मुल्कां च सी चलो डिजिटल एएम फ्रीक्वेंसी राइट टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सन जैसे सुन रहे हो अमेरिका दे विच कैनेडा दे विच सन तुसी बॉर्डर टू बॉर्डर रेंज दे विच यानी कि सारनिया लंडन किचनर वाटरलू कैम्ब्रिज गोल्फ मिल्टन या जी टी ए एंटायर ते ग्रेटर टोरंटो एरिया या इस दे नाल नाल सानू साउथ दे विच तुसी सुनदे हो 403 हाईवे दे उपर ब्रेंटफोर्ड सिमको काउंटी या हैमिल्टन तक ते हैमिल्टन तो लैके नैगरा फॉल तक नाल नाल तुसी सानू सुन रहे हो ईस्ट दे विच बेलवल ओशवा कर्टिस पॉमरविल हैम्पटन होंदे हुए सानू तुसी पिकरिंग एजेक्स होंदे हुए टोरंटो तक सारा सुन रहे हो नॉर्थ दे विच सानू बैरी तो लैके तुसी मस्कोका काउंटी दे विच यानी कि ओरेलिया एंड 400 हाईवे दे उपर ते 11 हाईवे दे उपर तुसी सानू सुनदे हो ग्रेवनहस तक ते तकरीबन 450 किलोमीटर दा एरिया जी टी ए दा जिहड़ा असी क्रॉस करदे हां प्लस अमेरिका पाके 1000 किलोमीटर दे रेडियस च ईस्ट वैसट साउथ नॉर्थ विच सानू सुनदे हो डिजिटल एएम फ्रीकुएंसी कई शहरां च एक्सक्लूसिविटी नाल चलदी है यानी कि तुसी अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हो लंडन किचनर वाटरलू कैम्ब्रिज मैं हैमिल्टन गया हैमिल्टन जाके पुछया कि इंडियन डॉक्टर चाहिए चार पाँच बंदे नूं टिम हॉटन्स से रोक के तो सब ने कहा कि इंडियन डॉक्टर वास्ते लोग जो ब्रैम्पटन मिसिसागा दे एरिया जाते हैं यानी कि पंजाबी बोलते डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं इस तरह बहुत सारे सर्विसिज ने बाहरले शहरों से लंडन वगैरह तो लैके किचनर वाटरलू वुडस्टॉक तक लोग वो सर्विसिज ब्रैम्पटन तो मिसिसागा तो लेंदे ने क्योंकि रिलायबिलिटी ते क्रेडिबिलिटी है ते लोग इत्थे आउंदे ने तुसी अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हो तुहाडे बिजनेस नूं असी उन्हां शहरां पिंडां कस्बियां तक लैके जांदे आ उन्हां लोकां तक जिहड़े काम कर रहे हैं तो रेडियो सुन रहे हैं तो तुहाडे बिजनेस नूं सुन के तुहानूं वो लाहा दे रहे हैं कोई भी जानकारी लिए मैनू 416-518-3200 416-518-3200 ते कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं चलते हैं एक सफर के वाल जो बहुत खूबसूरत हमेशा आगाज उस परम पुरख परमेश्वर के नाम ओट आसरे जिस दे नाम ओट आसरे आगाज दुनिया की हर शायद उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा चढ़दी कला वाला निरपो निरवैर रहेगा मुस्कुराहट चिर दा हिस्सा रहेगी रोशनी रस्ते दिखावेगी तुसी चलदे रहोगे।

0: पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9045412600। हेलो ब्रो, किथे है तू?
1: मैं क्लाइंट नु मिलन जा रहा हूं, सोच रहा सी टिम हॉर्टन्स च बैठ जाइए।
0: ओ यार, ये तो ओल्ड स्कूल हो गया, हुन तक क्लाइंट मीटिंग्स क्लासी होनिया चाहिए ने। नजारा रेस्टोरेंट लेके जाओ ना नु, प्राइवेट बूथ्स ने, फुल प्राइवेसी मिलती है, फ्री वाईफाई ते लग्जरी एंबियंस, बिजनेस मीटिंग भी सेट हो जाती है ते खाना भी बहुत बढ़िया।
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
0: नजारा रेस्टोरेंट, 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी। हुने कॉल करो 9054512600, 9054512600।
2: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
3: निर्बल बाबे ने कहा से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
4: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
5: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
6: रेडियो आवाज,
7: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: ब्रैम्पटन वासियों, हुण बदलाव दा समां, हुण तुहाडी आवाज सिटी हाल तक पहुंची। सुरक्षा पहली तरजीह, वध रहे प्रॉपर्टी टैक्सां ने परिवारां ते बहुत वड्डा बोझ पाया है। मैं टैक्सां विच राहत लई पूरी पूरी कोशिश करांगा। हद तों वध वधी होई माइनर वेरियस फी नूं घटाउण लई आवाज बुलंद करांगा अते लोकां दे पैसे दी जिम्मेवार वरतों मेरी पहली तरजीह होगी। सिटी हाल विच पारदर्शिता अते जवाबदेही ये मेरिया मुख तरजीहां हन। तुहाडा भरोसा मेरी जिम्मेवारी, तुहाडी आवाज मेरी ताकत। प्रेमपाल गिल, रीजनल कौंसलर उम्मीदवार, वार्ड नंबर 2-6 ब्रैम्पटन। धन्यवाद।
3: जेकर थोड़ी एज 40 साल तो घट है ते अगले 20 साल लई तुसी लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस दा कॉम्बो प्लान लेना चाहते हो ता $99 ले सकते हो। ज्यादा जानकारी लई तुसी मैनू कॉल कर सकते हो 6477563340 6477652340।
4: You're listening to Gumtaz Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

0: आज खुश बात हो गई था
1: वो तो होना ही है जो तो नो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे कहीं नगदा बन दई
0: है आज मेरे पास बिल्डिंग है प्रॉपर्टी है बैंक बैलेंस है बंगला है गाड़ी है
1: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नो वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री और दस क्या चाहिदा
2: चल क्या रहे यहां पर
1: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
3: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
1: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com होर कोई सेवा
4: भाई ये ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां
5: ओ इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नूं कॉल कर ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं
6: जी हां जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड़ है ते तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेथन एवेन्यू ब्रैम्पटन कॉल विल सेखो 416-819-6000
7: Hi, this is Harpreet Singh from Top Choice.

0: ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 416-817-6500. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ, ਚਾਰਟਰਡ ਲਾਈਫ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਫਰੋਮ ਟਾਟਫੇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ।
1: जब एच के मूवर्स का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। एच के मूवर्स होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। एच के मूवर्स, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704, 416-524-6704।
2: हासल फ्री मूविंग के लिए एच के मूवर।
3: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी

Drive Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 MacVin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 9054569900

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्गिन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: The wait is finally over. Gordy Kumin of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
2: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
3: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
2: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
3: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
3: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
4: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
3: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca।
5: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मां। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मां, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते एट 6141 मेफील्ड रोड यूनिट।
6: अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
7: 4K
8: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो को गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिए
9: चल क्या रहा है यहाँ पर
8: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
10: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
8: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गौर रोड 905-204-1313 जा tillovideo.com होर कोई सेवा
11: विमला विलेज ला विलेज पढ़ दे पीओ चंट पढ़ दा विमला विलेज ला विलेज विमला विलेज ला विलेज पढ़ दे। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

0: फ्लैट फीस है, कोई लालच नहीं है, कोई मीठी बातें नहीं है, कोई चलाकी नहीं है इसमें। कॉल करें, ऑफिस आए, अभी असेसमेंट कराए पहले कॉल पे, देन हमारे ऑफिस आइए। नंबर 437-234-3175, 437-234-3175, 437-264-3175।
1: ते भाई जी, जान तो पहला एक सब तो अहम सवाल, मेरे ख्याल दे विच बहुत लोग की जो तुसी ये लोन प्रोवाइड करवा रहे हो एसी काम दा हुण नकल करन लग गए ने, सो ऑप्शंस शायद होर भी होणगियां, पर तुहानू ही क्यों चूज कीता जावे?
0: हाँ जी, हम अपनी फीस ठा करके एयर पे बताते हैं, ना कि हम कोई परसेंटेज लेते हैं। जो परसेंटेज लेते हैं वो छुपे काम करते हैं, हम ठा करके ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए हम मतलब खुल के काम करते हैं। पहली बात, बहुत लोग पहले भी इस चीज को जानते हैं, इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। वो कहते हैं सर, पहला वाला हमें बंदा एजेंट टिम हॉर्टन में कोट पैंट पहन के मिला था, हमने कहा हमारा तो प्रॉपर ऑफिस है राइट, तो इसलिए वो हमसे राइट रेटिंग में जाते थे सेकंड कोर्स के लिए। अगर आप पहले भी ले चुके हैं सेकंड कोर्स करना चाहते हैं, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ऑफिस आए, प्रॉपर ऑफिस है, 6 बंदे आपके लिए काम कर रहे हैं।
1: धन्यवाद जी। नंबर है यूनो ग्लोबल एडवाइजरी सरंच नागपा, 437-264-3175, 437-264-3175। लोकेशन 218 एक्सपोर्ट बुलवर्ड मिसिसागा, स्वीट 212 दे विच। ये तुहानू पढ़ाई दे लई 50,000 तो लैके ऑल द वे $170,000 तक 0% इंटरेस्ट ते लोन प्रोवाइड करते हैं। जदों पढ़ाई खत्म होगी 2 साल बाद, उस तो भी अद्धा साल बाद जाके पहला कोई भी तुसी कोई किश्त जा कोई ब्याज पे करना, तो वह भी एनुअल सिर्फ 2.5% इंटरेस्ट रेट है, जो कि 15 साल तक किश्तां पे कर सकते हो, तो जेड़े मर्जी काम से यह पैसे वरत सकते हो। सरकार का ही यह प्रबंध किया हुआ है, ये कोई हवा चो नहीं कढ़िया हुआ प्रोग्राम, साड़ी ही सरकार का यह प्रबंध किया हुआ है, सो तुसी इहदा फायदा उठाओ। कॉल यूनो ग्लोबल एडवाइजरी 437-264-3175, 437-264-3175। एक फरमैशी गाना पेश करते हैं तो वापस आने बहुत ही जल्द। साढ़े एक बहुत ही प्यारे लिसनर साढ़े भाई हरप्रीत सिंह ढिल्लों ने फरमैश की आ, सिद्धू मूसे वाले कहते जरा मर्जी गाना ला दो, साडा फेवरेट आ, लाने जरूर, साडा भी फेवरेट ही आ। तो स्टूडियो तो फोन पर है 905-564-6446, 905-564-6446। तुसी 6 बजे तक कोई भी गलबात करनी आ ही नंबर कमाओ मित्रों, 905-564-6444, 905-564-6444। रेडियो प्रोग्राम देश परदेश।
2: Oh, idiot, don't hurt me, I'm a hand in God. Big boy.

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन ऊबर लिफ्ट दी सेफ्टी करोनी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1478 रॉयल ऑटो सेंटर टेक स्पिरिट हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घर लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही टेक स्पिरिट 905-621-4100 तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਹੋਮ ਸਿਨੇਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਟੈਕ ਸਪਿਰਿਟ 905-621-4100 905-621-4100 ਤੇ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ